नाले गावन तो दनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदन जोद महाबल सूरा गावन तुदन खाणी चारे गावन तुदन

कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकरख करत

भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण कहता, जी अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे।

कने कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सागर चमगिरी तुमरा सूतर तारी तुम ते हो ऐसो आगे का

तुमरी गात मित तुम ही जानी, सदा कुर्बानी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय बार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै।

है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन जे आवै ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना जी सहाय दसवां पातशाहियां की आत्मक जोत तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दर दा ध्यान करके बोलना जी वाहे गुरु साहिब जी के पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छकिया दे

सब ते वट समरथ गुरुदेव सब सुख पाई तिसकी सेव। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने पार बख्शा मेरा कीतिया। शाम दे सोने सज दीवानंद आप जी की लाही बाणी आरती शब्द कीर्तन आप जी दे गुरसिखां ने रल मिल के आप जी का जस गाव्या। सतगुरु जी अखंड कीर्तन राही सतगुरु जी आप जी के गुणों का गायन होया। आप जी की सिफ सलाह करदियां सेवकां पासों हुई भुलां गलतियां बख्श लैणियां। अगे तो होर श्रद्धा भावना सहित शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न दी हिरदे वसाउण दी दात बख्शिश करनी जी। सरबत संगतां दी हाजरी

प्रणाम सुमान है दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महल

पहुरास अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो हो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पाव।

श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौ मिध्या वैताए सब थाई हो सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना जी सहाय। दसां पातशाहियों की आत्मक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलना जी वाहे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने अपार बख्शिशां मेहरां कीतियां। अमृत वेले तो इस वक्त तक संतां नूं खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल कीता जी। इस वक्त आप जी दे दीवान दी समाप्ति जी की अरदास है। सोले जी के पाठ पढ़े गए सुखासन दी सेवा हुई पातशाह आप जी दी सेवा करदियां बाणी पढ़दियां हुईयां भुलां गलतियां बख्श लैणियां। अगे तो होर श्रद्धा भावना सहित बाणी पढ़न दी दात बख्शनी ते प्यार सत्कार नाल सेवा बख्शिश करनी। सतगुरु जी इस वक्त आप जी दे पावन पवित्र स्वरूप सचखंड विखे ले जाण लई संगतां हाजर ने सेवादार हाजर ने सतगुरु जी आग्या बख्शिश करो। अमृत वेले फिर दर्शन बख्श के निहाल करना।

के जन्म मरण होवे सिफत कसम दी चटिए तुद डिठे मल जन्म जन्म दी कटिए सच्चा पातशाह।

नानक कहे अवर नहीं कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल अष्टपदियां महला पहला कर दसवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद निकट वसै देखे सब सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई, विण पह पये भगत ना होई, शब्द रते सदा सुख होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

कोट लग बाही नाम जपत तय पार पराही अनक भगंजे आए संघारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन जन में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कबू न तो वह हर का नाम कोट पाप को वह ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाई है साध के संग जय मार के गन जाए न कोसा हर का नाम उहां संतोसा जय पैडे में अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पन तेरा को ना सी जानू हर का नाम ते नाल पछानू जय महाप्यान तपत बो काम ते हर के नाम की तुम ऊपर जाम जात्र का मन तुझ आकर खे ते नानक हर हर अमृत बरखे भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन बिश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत सन दिन रात हर हर औकत साध कमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बृद विवेक हर का नाम जन को हर का नाम जन को मुकत जुगत हर के नाम जन को त्रिपद भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर का नाम जपत कछ नहीं बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजय हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप प्रभु दीना हर हर जन के ओर सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त पौ करे नानक जन संकेते तरे पार जात एव हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दरद दुख लथा नाम की महिमा संत हृद बसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संगवड भागी पाई संत की सेवा नाम ते

बोले पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान योग अभ्यास करम धर्म किरिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए वो जतना उन दाम हो में बो रतना शरीर कटाई हो में कर राती वर्त नेम करे बो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौ कण पृथ्वी फिरे चिस जीवे माँ उदास तपिसर थीवे अगन माए हो मत प्राण कनिक अश्व है वर भूम दान न्यूली करम करे बो आसन जैन माल संजम मत साधन निमक निमक कर से कटावे तो भी हो मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कश नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिनस अर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बो साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरे जल तो वै बो दे अनीत शुद्ध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की बहमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत सियानब जमका बहु व्यापे अनक जतन कर तृष्णा त्रापे पेख अगे पेख अनेक अगन नहीं बुझे कोट पाव दरगह नहीं सिजे छूटस नाही ओप प्याल मोहे व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साथ जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लो रे साथ संग ए हो मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साथ जना की सरणी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ता कह बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साथ संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनी है सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेक है सगल सिर साजना सुख दुख जन समदिष्टेता।

करन करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपने गत में जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरे उस्ता तुम ते होए नानक अवर न जानस कोई सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साथ संग दुर्मत मल हिरया सगल उदम मैं उदम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रस

जिनकी आतिस चीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दिष्टानी, जिंतु साथ सवार सिगारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जो बन भोजन सुख सूद। बिरद पया ऊपर साग सैन, मुख पयाऊ बैठ कुदैन। ए निर्गुण गुण कछु न बुझे, बक्स लियो तय नानक सिजे। जय प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत प्रात में बनिता संग हसे। जय प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला। जय प्रसाद भोगे सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस पाव कर नेत्र रसना, तिसे त्याग वर संरचना। ऐसे दो गुण अंध ब्यापे, नानक काढ़ ले ओ प्रभापे। आद अंत जो राखन हार, तिस्यो प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नव निध पावे, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर ससदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावे दरगे मान, तिसे बसारे मुगदे अजान। सदा सदा ए पूलन हार, नानक राखन हार पार। रतन त्याग कौड़ी संग रचे, साथ छोड़ छूट संग मचे। जो छड़ना सो स्थिर कर माने, जो हो बन सो दूर पर आने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। चंदन लेप उतारे तोय, गर्द प्रीत पसम संग होए। अंधकूप में पतत बिकराल, नानक काढ़ ले प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर बेक अंतर बल माया, चपस नाहे कछ करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन स्वाह, कल्पातर कैसे तरे अथा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सह समात। सुनंदा कैसे मार्ग पावे, कर गे ले हो उड़ निभावे। कहाँ बुझारत बुझे डोरा, निस्कही है तो समझे पोरा। कहाँ बिसन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरपंग। कै पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं होत ऊहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। संग सहाई सुआवे नचीत, जो बैराई तास्यो प्रीत। बलवा के ग्रह पीतर बसे, अनद केल माया रंग रसे। दिलकर माने मने प्रतीत, काल नाया वे मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, चूट विकार महालोप त्रो। याहू जुगत बिहानी कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, उच्चे ते उचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी।

0: चूल्हा पाछे पावे एक बस कान भी खोट गवावे एक पी ना दे दस पी हिर ले तो मुड़ा को कहा करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताकू की जय सतमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ता हूँ मन वूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व दुख नानक तिन पाया अगनत सा अपनी दे दास
1: अज्ञानी महसूस करे अपनी प्रतीत आप ही खो वह बोर का विश्वास न हो वह जिसकी वस्तुत से आज्ञा रख है प्रभ की आज्ञा मन मत है उसते चौगुन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनिक भात माया के हेत सर प्रभुवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहयो तह

चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरह है मिथ्या नेत्र पेखत पर द्रह रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौतावे है मिथ्या मन पर लोभ लुभावे है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पय सफल देह नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताकै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे

जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस का बीजय जे प्रसाद तुझ सब को मान मुखता को जस रसन बखान है।

जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके। जय प्रसाद तुझको न पूछै मन सास सास सिमरौ प्रभु ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद असवहस्त असवारी मन

सादगर संग अगोचर मिलाए, सादगर संग सदा पर फुलाए, सादगर संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेन, सादगर संग मनोहर बैन, सादगर संग न

अवर ना पेखै एकस बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी।

ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उप्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो पड़ा ब्रह्म ज्ञानी सफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सब सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाई है ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मान माँ है

ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उरतार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी।

इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोड़ मधे को ऐसा परस वैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत होवै नहि कर्म तिस वैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बादशाह केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जो पावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मलख होवै तिस भगवती कीमत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै।

बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहवरना मह जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोए।

कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेग्य आत्म निकोर, कई कोट पर दर्प को रह, कई कोट पर दुख न करह है।

कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रसभोगी, कई कोट पंखी सर्पे पाए, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पाणी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्शास्त्र, कई कोट किए रत्न समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत।

के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव मरह, कई कोट बहु जोनी फिरह, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट का लह थक पाहे, कई कोट किए तनमंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कै हाथे।

कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तनको मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोट मंग है सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको आप होए सो जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन। कई को

कई कोट आत्म कई कोट पार ब्रह्म के दास तन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार है एको नेत्रे।

करन करावन करने जोग जो तिस भावे सोई होग खिन मैं ताप तापन हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तार अतर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मह रहया समाई प्रभ भावै मानुख गत पावै प्रभ भावै ता पाथर त्रावै प्रभ भावै बिन सास ते राखै प्रभ भावै ता हर गुण भाखै प्रभ भावै ता पतत उधारै आप करै अपन बीचारै दोहां सिरिया का आप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या होय आवै जो तिस भावै सोई करावै

कबहू मां क्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू भिखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त मह आवे, कबहू भला भला कहावे, ज्यो प्रभ राखै तिवहि रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन धारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ इसनान, कबहू सिद्ध

जोन परमावै धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्त आगे सुख पावै। तरमंता होए कर गर्भावै तृण समान का शशंग न जावै बहु लस्कर मानक ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश। सबदे आप जाने बलवंत किनमें होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुवारी। गुरप्रसाद मिटे अभिमान गुरप्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करे हाँ तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार। अनेक जतन करे आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै। सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक दाखी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझ दे कछु होए तब इसको सुख नाही कोए जब जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचर नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हां छूटे सहज खटे लख का उठता वै तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनक भोग विख्या की करै नह तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं कोऊ राजै सपन मनोरथ बिरथे सब का जाय। नाम रंग सर्व सुख होए।

आप किनो अपन विस्तार सबका सुसका हो करने हार उसते भिन्न कहो किस होए थान थरंतर कै सोए अपने चलते आप करने हार कद करे रंगा पार मन में है आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किन

संत दोखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए भीगत पाहे। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई। संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन। संत के निंदक और सर्व रोग, संत के निंदक और सदा बिजोग।

संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महाअहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी।

संत का दुखी औंदल लाए, ज्यों जल बिहोन मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राज जाए, ज्यों पावक इंद्र नहीं त्रापाए। संत का दुखी छुटाए।

एक आस हर मन को नानक दुख परम पौजाए अष्टपदी मानुक की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दे रहे अघाए बहुर न तृष्णा लग गए आए मारे रखे को आप मानुक के कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म भूत सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिगन न लागे कोए उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सद्व्यवहार निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनु पेक ठाकुर का रंग साथ संग बिन से सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा बड़ बागीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक को एक एक पछाने इत उत कियो सो जी जाने नाम संग जिनका मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सुझे तिसकी जानो तिसना बुझे साध संग हर हर जस कह

पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर प्रभ वंचित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किससे डरे, जैसा सा तैसा दिष्टाया अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सीजिया गुरु प्रसाद।

जुगत रच थाप उथाप अविनाशी ना ही किछ खंड तारणता रहो ब्रह्मण अलख पेव पुरख प्रताप आप जपाए तनानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदर तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के से

तुझ से चितार जो कुछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान कौन बस आए तेरे संग लपट रे और रसलोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद से ती कर जाहे जिस वक्कर को लें तू आया राम नाम संतन कर पाया तजब मान ले हो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाख खेप संत संग चाल अवर त्याग क्या जंजाल तन तन कहे सब कोय मुख उजल हर दर गै सोय ए वपार बिरला वपार नानक ताके सद बलहारे चरण साध के तोय तोय पियो अरब साध को अपना जियो साध की तोर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा बड भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाये अनेक बिगंते साधु रखे हर गुण गाये अमृत रस चखे उठ गही संत दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाके दृष्टि माहे पूरब लिखे का लहना।

सच हृदय सतमुख कहत सच हृदय सच आयाकार सच वर्ते सच आपासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन।

ही सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मण नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत करम जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब पली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत्य जन जा कै हृदय परवेश सत निरत बुझे जे कोय नाम जपत्ता की गत होए आप सत की या सब सत आपे जाने अपनी मितगत जिसके शिष्य करने हार अब न बूझ करत विचार

सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सब धारी आपे।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख भिकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वडभागी है सतगुर सिख का हलत पलत सवारे नानक सतगुर सिख को जिय नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कृष्ण जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचै सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास सेवा करत हुए न कामी तिसको होत परापत स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस बिसवे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पहर पा ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कश परम सहसे अनप लया न जाइए नानक ऐसा गुरबट भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर बचन करन आगाने मन संतो का तंपतिया ने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दिस पे कह होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए।

अनिक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे, सद बलिहारी सदगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, ए हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरब का नाही।

मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक परगा से नानक परम मोहो दुख तहते नासे तपत माहे ठांड वरताई अनज भया दुख नाटे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहुंचुका निर्भो होए बसे सगल ब्याद मन देखे नसे जिसका साथ इन कृपा ता

चरण कमल रद में उतारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत, ए तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मन, एक आस रखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार कुंठ उठतावे, सो तन हर सेवा ते पावे, जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सो बागो करे पली करनी, सा सो पापज हर की सरनी।

अनेक उपाव न छूटे न हारे सिमरत शास्त्र भेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुतमी।

सुनत कहत रहत गत पावो, सार पूत सतहर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुन गाओ। गुन गावत तेरे उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं बिक फैल, ओहे अचिंत बसे सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल, छाड़ से अनप सगली मना, साध संग पावे सच तना।

एक उसके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हरिया पूरन पूर रहो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते पै एक अराध परा छत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक।

उपजाओ साध के संग परेशरण आन सब त्याग अंतर प्रगासन दिन निवलाग बटपागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए।

हर के नाम की कथा मन पाई। वो भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत, फली सुकरनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख

जब अपन आप पार ब्रह्म तबो कांकस होवत परम अपन केल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकुट को किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुरख को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो किच्छाए जब आपे आप अपनी जोत तरे तब कवन डर कवन कत डरे आपन चलता करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन ते जन्म मरण को कहा बिनासन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जय निर्मल पुरख पुरपत होता तै बिन मैल कहूँ क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै चल छिद्र लगत को कीज जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तै किसे भूख कवन तृप्ता वै करन करावन करने हार नानक करते का नहीं सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पेपर बीन तै बेद कतेब कहाँ कोचीन जब आपन आप उड़तारे तो सगन अब सगन कहाँ बिचारे जे आपन ऊंच आपन आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्मार नानक अपनी कत जानो आप जय चल अचेत अपेत समाया उहाँ किसे पे आप

जय अपन आप आपति हारत है कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा जय आप रचियो पर पंच अकार तय गुण में कीनू विसार पाप पुन तय पई कहावत को नरक।

हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एकस कट माहे अनेक रंग नाना दिष्टाए नौनित अमृत पप का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तैनात कहन न जाय चर विस्माद तिन देख्या जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा।

तैसा करम पौन पानी बसंतर माही चार कुंट दद से समाए तिसते बिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत में देख ससियर सूर न कतर में एक बाणी प्रभ के सबको बोले आप अडोल न कभू डोले सर्व कला।

प्रभु जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोहि आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस पावैता करे विस्तार तिस पावैता एक अंकार अनिकला लखी न जाए तिस पावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप पर।

सारी कीनी माया सबके मद अलिप्तो रहे जो किस कहे सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जावे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इस्ते होए सो नाही बुरा और एक हूं कि न कश करा आपला कर तू तत्नी की आपे जाने अपने जी की आप साज तहरी सब साज ओत पोत आपन संग राज ताकि

पार ब्रह्म निकट कर पे सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंत आस अनित त्यागु तरंग संत जना की दूर मन मंग आप छोड़ बेंती कर हो साथ संग अगन सागर तर हो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साथ संग पज परमानंद।

दयाल दुखभंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर ना बारंबार। नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार। आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद बाजे सुन सुन अनद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल। जय जय शब्द अनाहद बाजे सुन सुन अनद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महान के माथे। नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साथ संगलैन। मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साथ संगलैन सुप्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दिया प्रभ तारी। नानक निबी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। सुख मन सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूरन होए प्रदान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊंच बाए अस्थान बहर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान।

असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पाख सार असंख मौन लिवलाए तार।

प्रधान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगांज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, निर्भ

है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमाने समस्ते निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे।

नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो अप्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो भूप भूपे पूप

सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद कर

मंग अकामंग समस्तो प्राजी समस्तस्ता मंग तेरा जोर चाची छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तुं निर्नाथे नमस्तुं परमाते नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अपंजे।

चरपट शांत त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं। सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग

दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीकन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंग हीन अभंग नातम एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रति

केसरबत्र देसा है, केसरबत्र पेशा है, केसरबत्र राजा है, केसरबत्र साजा है, केसरबत्र दीना है, केसरबत्र लीना है, केसरबत्र जा हो, केसरबत्र पा हो। केसरबत्र देसा है, केसरबत्र पेशा है, केसरबत्र काला है, केसरबत्र पाला है, केसरबत्र हंता, केसरबत्र घंता, केसरबत्र पेखी, केसरबत्र पेखी, केसरबत्र काजा है, केसरबत्र राजा है, केसरबत्र सुख है, केसरबत्र पुख है, केसरबत्र त्राण है, केसरबत्र प्राण है, केसरबत्र देसा है, केसरबत्र पेशा है, केसरबत्र माने है, सदैव प्रधान है, केसरबत्र जापे है, केसरबत्र थापे है, केसरबत्र पान है, केसरबत्र मान है, केसरबत्र इंद्र है, केसरबत्र चंद्र है, केसरबंग कलीम है, के परमंग फहीम है, के आकल अलाम है, के साहिब कलाम है,

सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्तार सावल शांतत्व प्रसाद नमो नरकनासे सदा प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे

सद सदाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ।

सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उभरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हुजो सदा हमारे पछा, श्री अस तुझ जू करियो रक्षा। राख लियो मोय राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम्हों बुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर्बिशन।

मारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सदरण को पल मोबद कियो घट घट के अंतर

कृपा करे हम परजग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता कलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन कोशा करता श्री अस्तोज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांसत फल पावै सोई दुख न दिसै व्यापत।

निकट न तिन नर के रहै हो जो याकी एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत सतरह सहस पण जाय अर्ध सहस मुन तीन कह जाय भादरव सुदेश मेरा वारा तीर सदरव ग्रह

कथ्यो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किन न पाया चतुराई न पाया किन तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिनेत परम भुलाया माया ता मोहनी तने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटों जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किन न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एह कुटम तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चितलाई है तिस नाल क्यों चितलाई है।

निर्मल जियो निर्मल सत गुरते करणी कमाणी कूड़ की सोय पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन मृतन जिनी खटिया भले सेवन जारी कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा संभाले आप छड़ सदा रह परणै गुर बिन अवरना जाने कोई कहे नानक सुनो।

कहो नानक सब कोई नाओ न जाने। बोलो जी, बोलो जी। प्रपास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा, हो तुद त्याई। अरदास एक ओवंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार, श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरख है। गुरु नानक ले प्याए फिरंगत गुरु ते अमरदास, रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो, श्री हर राय श्री हर कृष्ण प्याये। जे डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए। सब थाई हुए सहाय दसवीं पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देग चलाई तेग बहाई देख के अंडित कीता, तिना प्यारियां सच्चियारे दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल तंच रवाए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां, सिखी केसां स्वासां संग निभाई धर्म नहीं हारिया, तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग देग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहब जी साहेब खालसा जी के बोल बारे। बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाओ दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार, खालसा जी के बोल वाले। बोलो जी। सिखां दा मन नीवा, मत उची मत पतदा रखा, आप अकाल पुरख वाहिगुरु। हे अकाल पुरख सतगुरु, अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जीओ। श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दी सेवा संभाल खुले दर्शन दीदार प्यारे पंथ। खालसा जी नूं बख्शिश करो निमाणिया दे माण, नितानिया दे तान, मियोटियां दी ओट। गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी, धन गुरु नानक साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, शब्द गुरु दाता जी। आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जी। आप जी दे चरणा कमलों विच अरजोई है महाराज जी। आप जी दे पाने अंदर चार पहर सुख रहण बती पवी है सच्चे पातशाह। अमृत वेले आप जी ने अपने सचखंड तो दर्शन दीदार दे के प्रकाशवान होके महाराज जी तख्तां ते संगतां नूं खुले दर्शन बख्शिश कीते ने महाराज जी। उपरंत सुखमनी साहब जी का पाठ किया गया, पंजां बाणियां का नितनेम होया महाराज जी। सेवकां पासों बेंत फुल्लां हो गई, आप जी बख्शण योग हो महाराज जी। बेंत संगतां अमृत वेले दीआं हाजरियां आप जी दे चरणा कमलों विच बैठ के भर रहीआं ने महाराज जी। सारिआं नूं अपने दर तों खुशियां दे के निवाजना, कड़ा प्रसादी दे हाजर है गुरु गरीब निवाज। दर प्रवान करो भोग लगे प्रसाद जो भी छके। सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जपे महाराज जी। प्यारे पंथ नूं चढ़दी कला एकता सदा जय जयकार बख्शिश करो गुरु गरीब निवाज। आप जी दे दर करदे अनंत सेवक भाई इंद्रजीत सिंह, बीबी अमृत कौर महाराज जी, कनेडा इमीग्रेशन के कार्जा लई अपने पोते काका मनजोत सिंह दे कार्जा दी इमीग्रेशन कैनेडा दी महाराज अरदास बेनती लैके हाजिर होए ने। बेअंत माया भेटा कर रहे ने, मेरा करो गुरु गरीब निवाज। कीता लोड़ीए कम सोहर पया कीए, कारज दे सवार सतगुर सच्चा कीए, संतां संग निधान अमृत चाखीए पै पंजन मेहरवान। दास की राखीए बच्चियां दे कारज रास करो महाराज जी। थिर कर बैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे, काज सवारे दुष्ट दूत
परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारे बादशाह सा सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निरप हुए भजो भगवान साध संगत मिल किनो दान शरण परे प्रवंत्र जामी नानक ओट पकड़ी पर स्वामी गुरु गरीब नवाज तुहाडे दर घर दे कीर्तनिया दे टहलिया दे भी महाराज जी इमीग्रेशन दे कार्ज दास करो सचे पातशाह भाईंदर जीत सिंह बीबी अमृत कौर तिना दे पोते मनजोत सिंह दे भी महाराज जी कार्ज विच खलो के सबना दे कार्ज रास करो बख्शिश करो मेहरा करो संपूर्ण आसा दीवार कीर्तन प्रारंभ करन दी आग्या बख्शिश करना पवित्र हुक्मनामा बख्शिश करो हुक्मनामे ते चलन दी समर्था सुख होवे नाम चेतावे नानक नाम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की दोहरा गया पही अकाल की तब चलायो पंथ हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभ को मिल बोच है राज करेगा खालसा आकी रहे ना ख्वार होए सब मिलेंगे खंडा जाके हाथ में कल भी सो हमरी रचया करे गुर कलगी सो हमरी रचया करे गुर कलगी तर बोले सो निहा वाहिगुरु जी का खालसा।

देख कहो पावे मन सोए, नानक कहे अवर नहीं कोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल अष्टपदियां महला पहला कर दसवां। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद निकट वसै देखे सब सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई, बिन पै पै भगत न होई। शब्द रते सदा सुख होई। वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दा कोटान कोट शुकराना। अमृत वेले दियां हाजरियां, दिन दी शुरुआत महाराज के दर्शन दीदारां तों, करमां वालियां रूहां जिन्हां दी जीवन विच महाराज का दर्शन है, अमृत वेला है, कन्ना नाल बाणी का प्रेम है, अखां विच गुरु का दीदार है। महाराज कहिंदे ने ऐसे गुरमुख ऐसियां भैणां बहुत साजी ते निवाजियां जांदियां ने। महाराज के घरों सारिया खुशियां बरकतां नाल चौलियां भरदियां ने। सच्चे पातशाह मेरा करन जिन्हां जिन्हां की जो भावना है, सच्चे पातशाह वो भावना गुरु दरबार विचों पूरियां करन, चौलियां भर के साडियां भी तुहाडियां भी अपने दरबार तो भेजण। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी, सरबत दा भला। आओ बड़े प्यार नाल अति सत्कार योग साढ़े अपने सन्मान योग कीर्तनीय भाई साहब जी भाई हरभजन सिंह जी लहरी, वो आप जी संपूर्ण आसा दीवार के कीर्तन द्वारा निहाल करनगे जी। गुरु रामदास सच्चे पातशाह, धन गुरु नानक साहब जी, गुरु ग्रंथ साहब जी, सारे जीवां ते मेहरा करन जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सच्चे तू दाखै लख करोड़, सच्चा सब तान सच्चा सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सो कच नी कच।

की पीड़ा पई कुमे हर घड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोए बपड़े चढ़ चढ़ पव्यंग्या नानक जिन करता कारण किया सो जाण करतार पौड़ी बिन सतगुरु कने न।

वस्त्र न पहरे निस्कहर मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता। पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाए। मूर्ख खंदे पत गवाए बिनावे किस थाए न पाए रह बेबाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी।

मंजूर चली चंद्रा उलकान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी ल आया बंदरा बन में रंग किया कल में अंबेदा तरबण हुआ ना खुदाई अलह पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुल पठानी अमल किया चार वेद हो चार पढ़ाए गुण तीन चार विचार पाव भगत करनी सदाए तौरान मुखंतर पर।

रंग रोवे चुप पी कर जाए, प्रभा नहीं किसे केरी भाज सच नाय, दुर्वाटी ऊपर खर्च मंगा

0: सुनिहान सत्रियाकाल।
1: वाहिगुरु जी का खालसा।
2: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किस कर्म

मत गुरमत राम रसाला रहाउ। गुरमत नाम त्याइए हर हर, मन जपिए हर जप माला। जिनकै मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बन माला। जिन हर नाम त्याया तिन चूके सर्व जंजाला। तिन जम नेड़ न आवई गुर राखे

पै बहु कंचन दीजै काट काट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट। त्रिकुटी फोर

रे मन टहल घर सुख सार, अवर टहला झूठिया, नित करे जम सिर मार। रहाउ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार भौजल तारिया हर सं

जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरकह बरस मेघ, जैसे पालन सरन सेंग, गरुड़ मुख नहीं सर।

जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच

मधुर मधुर तुन अनहत गाजे रहाओ। तन तन मेगारू मावली, तन तन कृष्ण उड़े कांबली, तन

अपना आप तू कबू न छोड़स, स्वान पूछ ज्यों रे एक पाखंडी नाम नारा चह, एक हर हर चरनी रे पूर

ना इस धन को मिले सजाई, इस धन की देखो वड़ियाई, सहजे माते अन दिन जाई, एक बात अनूप सुनो नर पाई, इस धन बिन कहो किने परम गत पाई, भणत नानक अकथ

राजा तख्त टिकै गुणी भय पंचाय नरत। बाबा साचा साहिब दूर ना देख, सर्ब जोत जग जीवन से

ज्ञान रत्न मन माजिए बहुड़ न मैला हुए। जब लग साहिब मन वसै तब लग बिघन न हुए। नानक सिर

शब्द वसाए भरम चुकाए, सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख, ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बाहर घर एको, नानक।

करो कृपा एक बार, एक बार दास बोलेगा, एक बार सारी संगत ने बोलना है। हाल बहुत बड़ा है, तुसी बोल रहे होगे मेरे कन्ना च आवाज नहीं आ रही, सो बेनती है एक बार असी बोलांगे, एक बार तुसी बोलना, असी बोलांगे तुसी ना बोलना, तुसी बोलोगे तो असी नहीं बोलना। आप गाने वास्ते आए हैं, फिर एक शब्द की हाजिर होर भर के बहुत ही सत्कार हो गुरु रामदास महाराज जी के वरसाए कीर्तनी भाई साहब भाई इंद्र जी सिंह जी खालसा जी, वो भी पहुंच चुके हैं दसों के बाद उन्होंने हाजिरी भरनी है। सो करो कृपा उची आवाजाएं चो।